बादशाह बख्शिश कर रहे हैं, चरण छिलो मार्ग गोविंद। ए केड़ा मार्ग है जिथे जीव चल के अपना लोक भी सुखी ते परलोक भी सुहेला कर सकदा। ओ मार्ग है उस्तत मन में कर निरंकार, हर वेले अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर दी उस्तति करनी, ओदे गुण गाउणे। ए मार्ग है जिस करके जीव भव सागर तो पार हो सके। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पीवो। ए रसना पवित्र हो जाती है जदो नाम दा अमृत पींदी है, जपदी है श्री वाहेगुरु। निर्मल रसना अमृत पीवो सदा सुहेला, कर रै जियो नैनो पेख ठाकुर कारण। जिन्हां दे हिरदे विच नाम दा अमृत समा गया है, उन्हां नूं फिर संसार दे लोग अकाल पुरख वाहिगुरु दा परिवार नजर आउंदे हन। जे उदा परिवार है तां एक पिता एक सिखे हम बारक। साडा एक पिता है ईश्वर और असी सारे ही उसदे बारक हां। ऐसी दृष्टि हो जाती है नाम जपन दे नाल के ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने आई। हजूर बख्शिश कर रहे हैं कि नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग। सत संगत विच बह के अकाल पुरख दे गुण गाउन नाल तेरिया होर माड़ियां जितनिया भी आदतां हन संगतां हन, वो आपे ही तेरा पिछा छड़ जानगी। आओ सारे प्यार दे नाल।

के निर्जुन नरूप हो के निर्जुन पूर्वी न पार पावे हिंगला हिमाल जावे गोर घर देश कुल गाव तेरा नाम है पूर्वी न पार पावे हिंगला हिमाल जावे गोर घर देश कुल गाव तेरा नाम है जी दुख दुख सद पुन सद लगते।

अकाल मूर्त अजूनी सहभंग और प्रसाद जब आप सच युगात सच है भी सच नानक कोशी भी सच चक्र के निर्वण जात हर पात निहिंजे रूप रंग रगी पी कूकर सत्य है अचल मूर्तन भव प्रकाश अमित तूज कहिंज कूक इंद्र इंद्राम शाहु शाहान गणिज फिर भवन में ही सुर नारासुर नीत नीत मंडन कह तब सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्ण समत सतपुर आयु शरण तुहारी मिले सुख नाम हर स्वभाव चिंता लाए हमारी और न सूझ दूजी ठार आर पर तो द्वारी लिखा छोड़िया लिखा छूट है हम निर्गुण ले हो बारी सर्वक्षण सदा मेरवाना सबना दी आधारी नानक दास संत पाछा परयू राख लियो ए बारी सतगुर हुई दयाल ता श्रद्धा पूरी है सतगुर हुई दयाल ना कम हो चूरिया सतगुर हुई दयाल ता दुख न जानिया सतगुर हुई दयाल ता हर रंग माणिया सतगुर हुई दयाल ता जम का डर के हा सतगुर हुई दयाल ता सद ही सुख दयाल सतगुर हुई दयाल ता नौ निज पाइया सतगुर

0: अपने परत करें प्रद बाला अदरा तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई अदरा तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई
1: वाहे जी का खालसा। Thank you.

ये जो शब्द आप श्रवण कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा शुकराने दा शब्द है सुलही ते नारायण राख। समय दा बादशाह जहांगीर जिसनू ए गल चंगी नहीं सी लगदी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जावे। गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करन लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन, इस दे मन विच बड़ा दुख सी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जा रही है। अपने सीपा सलार नूं हुकम दिता भई तू कश्मीर नूं जा रहे हैं जंग करन लई, ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहिंदा है, उस नूं भी सोधदा जाई उचारण करो श्री वाहिगुरु। ते जदों ए पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं लग्या तां सिखां ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकित है, प्रथमे मता जे पत्री चलावो, द्वितीय मता दोए मानक पहुंचावो, तृतीय मता किश करो उपाया, मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। हजूर अगे बेनती कीती गई कि महाराज जे हुक्म करो ता बादशाह जहांगीर नूं पत्रका लिख दईए जां दो सियाने बंदे भेज दियो, कुछ उपा जरूर करो। ता धन गुरु अर्जन दे पातशाह ने आख्या मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। नेत नाल जदों बड़े हंकार दे नाल सुली खां चढ़ाई करके आ रहा सी ता इस दा घोड़ा ऐसा पागल होया बलदे पठे विच जा वड़िया ते सुली समेत स्वाह हो गया। इस शुकराने वजो हजूर ने शब्द उचारण कीता सुलही ते नारायण राख। सुलही का हाथ कही

पता नहीं कि इस तरह परमेश्वर का सदा आ जाएगा। साहब जी कहते ने इंसान हर काम महूरत देख के करता, घर बनाना होवे घर बन जावे, ग्रह प्रवेश करना होवे या कोई ब्याह होवे, कोई भी खुशी का काम होवे, ता इंसान सारे तो पहला दिन देखता है, तारीख देखता है, महीना देखता है, साल देखता है, मुहूर्त देखता है। ए काम इस महीने इस तारीख नू करना है, इस वेले करना है, ताकि सारे नू बुला लवा, किधरे कोई नाराज ना हो जावे कि मैनू नहीं बुलाया। गुरु साहब जी कहंदे ने ऐ इंसान तू हर काम महूरत ते कीता, दिन देख के कीता, साल देख के कीता, पर मरण लगिया तू कोई महूरत ना देखिया, कोई तरीक ना देखी, ए ना सोचिया इस दिन इस तारीक नू इस महीने इस मुहूर्त नू मरा सारिया नू दस दिया ताकि कोई नाराज ना हो जाए कि मैनू नहीं बुलाया। साहब जी कहंदे ने ऐ इंसान हर काम तू मुहूर्त दे कर सकदा है, पर जड़ी मौत है ए मुहूर्त नहीं देखन देंदी। मरण ना मुहूर्त पुछया, पुछी थितना वार, मौत ने ना दिन देखन देता, ना तरीक देखन देती, ना कोई महीना देखन देता। बस इना ही पता लगा चंगा पाला सारे परिवार नु मिल के घरों तुरिया कि मैं चलदा आ जावांगा वापस, घरों ते तुर पिया, परिवार नु मिल के बड़ा खुश है, पर की पता सी कि जांदियां जांदियां रस्ते विच ही परमेश्वर दा हुक्म आ जाना। घर वाले घर उड़ीकदे पए ने, आ जाणगे शाम नूं, मेल हो जाएगा, पर क्या पता सी उस तां वापस नहीं आना, पर उहदी मौत दा सुनेहा जरूर आ गया। रस्ते विच जांदे आ हुक्म आ गया परमेश्वर दा, आया हुक्म पार ब्रह्म का, उस अल्लाह उस पार ब्रह्म दा हुक्म आ गया, जांदियां जांदियां रस्ते विच ही हुक्म आया मौत हो गई। साहब जी कहंदे ने बड़ा कुछ बनाया, हाली मन दे चाह भी पूरे ना होए, पर जद हुक्म आया तां छोड़ चलिया एक दिहाड़े, जो कुछ बनाया सी सारा कुछ एक दिन छड़ के तुर पिया, ना पत्नी दा ख्याल, ना बच्चियां दा, ना रिश्तेदारां दा, ना सजना मित्रां दा, कि आखरी वेले किसे नूं मिल ही लवां, नहीं। परमेश्वर दा हुक्म बड़ा डाढ़ है, जद उहदा हुक्म आवे फिर किसे नूं मिलण दा समा नहीं मिलदा, हुक्म बड़ा डाढ़ है। आया हुक्म पार ब्रह्म का, छोड़ चलिया एक दिहाड़े, हुक्म आया और एक दिन सब कुछ छड़ के इस दुनिया तू अपने प्यारियां नूं रोंदा कुरलांदा छड़ के तुर पिया।

महाराज मिलक जोबन ग्रैसोबा रूपवंत जवानी जान वाला सब कुछ छड़ गया राजभाग जोबन जवानी ग्रह केंद्र ने कारण अपना कार शोभा सोना रूप सारा कुछ छड़ के एक दिन तुर पिया बहुत दर्ब हस्ती यार कोड़े लाल लाख बयानी हाथी कोड़े समय दी सवारी हर चीज एक दिन छड़ के जो बड़े चा नाल बनाई एक दिन तुर पिया।

हुकम सी परमेश्वर दा परसा संगत हुकम मनना कोई सौखा नहीं। ए भी सच है एक दिन मरना है, पर ए भी तां सच है कि विछोड़ा सहना बड़ा औखा है। इस दुख दा उन्हूं पता है जिदा कोई मरे, क्योंकि गुरु साहिबां ने इस दर्द नूं समझिया। अगर किसी औरत दा पति मर जाए, मां दा पुत मर जाए, उस दुख नूं गुरबाणी विच साहिब जी बयान करदे ने, ओ मां जिदा पुत्र जिन्हों ने बड़े चा नाल पालिया, कहिंदे ने हर मां बाप की इच्छा हुंदी साडा पुत्र वड्डा होवे, जदों असी मरीए ये सानू मोढ़ा देवे। पर ऐसे मां बाप नूं जदों ये पता लगे कि साडा पुत्र मर गया, ते उन्हां दा दुख की हो सकदा है। कबीर साहब जी बयान करदे ने, देहुरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए भाई। वेड़े विच बैठी मां रोंदी पई है, जिस पुत्र नूं पालिया जानदा तां मेरा समां सी, उस पुत्र नूं मरिया देखिया। जिन्नू चार भरा आए चुक के लै तुरे, एक पासे मां रो रही है, दूसरे पासे लट छिटकाए तिरिया रोवे। तिरिया औरत नूं के है, एक पासे वाल खिलार के औरत पई रोंदी है। जिदे सिर दा साईं चला गया, ओदे दुख नूं कौन समझ सकदा है। साहिब जी धन गुरु नानक साहब बाणी विच बयान करदे ने, औरत भी पति नाल ही सौंदी है। जद तक पति जिउंदा है आदर सारे दिंदे ने, पति ना रवे ते दुनिया विच जीवन जीवना बड़ा औखा हो जांदा है।

सुंदर अखाड़े रण में जिते पवाड़े। हर इंसान यह चाहता है कि मैं किसे ना किसे ते हुक्म चलावा, मेरी हुकूमत होवे, दुनिया मैनू सलाम करे। इंसान लड़ाइया जितता है, तरक्या करता है, बड़ा कुछ बना भी लेंदा है। ए भी कहंदा है हों मारो हों बंदो छोड़ो, मुख ते एव बबाड़े। मुख कहंदे ने मोन, मोतू ए भी कहंदा है मैं जिनू चाहवा ओनू मार सकदा, जिनू चाहवा ओनू छड़ सकदा। पर साहब जी कहंदे ने दुनिया ते हुक्म चलाण वाला कल भी सलाह करके सौंदा है, पर उदों ही पता लगदा है हुक्म आ जांदा है, मौत आ जांदी है।

फिर प्यार भरी एक निगाह अपने सुपुत्र गुरु अर्जन साहब वाल देखिया, एक निगाह सारी संगत वाल देखिया, फिर अखा बंद कर लिया। देखने वालिया नू इस तरह जापदा है होने अखा खुलन गिया, होने कुछ कहणगे, होने बुल हिलणगे, कोई अमृत बचन सुनाणगे। पर समा आ गया ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। धन गुरु रामदास ज्योति ज्योत समा गए ने और उपदेश कर गए किसी ने रोना नहीं, क्योंकि रोण का लाभ कोई नहीं। मत मैं पिछे कोई रोग सी सो मैं मूल ना पाया, रोना नहीं परमेश्वर का कीर्तन करना है, सिमरन करना है, ताकि सिमरन सदका विछड़ी रूह नूं परमेश्वर अल्लाह दे चरणां विच जगह मिले। ए उपदेश कर गए ने पाई, अगर कोई विछड़ जाए दुनिया ना त्यागना, विराग विच पै के अपना शरीर ना गवा लेना, दुनिया विच रहना, दुनिया नूं नाशवान समझना है, दुनिया दे काम भी सारे करने ने, पर नाशवान समझ के किसे दा बुरा नहीं करना, किस ना ठगी नहीं करनी, जीवन उच्चा ते सुच्चा बताना है। गुरु साहब जी कहंदे ने कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने उपदेश करे, आप ना कमावे तत शब्द ना पछाने। नांगा आया नांगो जासी ज्यों हस्ती खाक शाने, संत सज्जन सुनो सब मीता झूठा ए पसारा, मेरी मेरी कर कर डूबे खप खप मोए गवारा। गुरमिल नानक नाम ते आया साच नाम निस्तारा, एक नाम ने निस्तारा करना है। अज दा कीर्तन आपां सुन के अपने मना विच धारिए, एक दिन मरना है ताकि जीवन सफला करके जाइए।

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार किया, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो। साहिब गुरु गोविंद सिंह साहिब जी बहुत प्यारी रचना अकाल उस्तत विच फरमान दी, कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो।

आओ भाई अज दे दिन अरदास करिए। पातशाह साडे हिरदे विचों नफरत दी आंधी जो चलदी है उस नू मिटा। बख्शिश कीती सी आप जी ने भाई कन्हैये उत्ते जिस वेले उसने दुश्मन नू दुश्मन ना समझिया ते फिर तू सिख हो के सिख नाल नफरत करें गल बनेगी। कदी भी खून नाल खून नहीं तुलदा पानी पाया ही खून तुलदे। नफरत नाल कदी नफरत खत्म नहीं होई ओदे उते प्यार दा पाना पानी पाना पएगा। साच कहूं सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पाए। बाबा गुरमुख सिंह जी एक गल आखदे हुंदे ने तुसी किसे दे घर चले जाओ तुसी उन्हां नूं कहो मैनूं प्यार दिओ कोई नहीं देगा। जे तुसी खड़के कह दो आओ लोगो मैं तुहानू प्यार दिया हजारां लोग तुहाडे कोल आउणगे ते पहल तू करनी है। प्यार असां देना है लैणा नहीं देवे तां ठीक है पर असीं कहिंदे आ इहने फतेह नहीं बुलाई असीं क्यों बुलाईए। ना भाई उह नहीं बुलांदा तू बुला लै तू प्यार कर तेरा फर्ज है। हंकार ते नफरत दी आंधी विच ऐ मेरे पातशाह जिवें तुसी मलम ते पट्टी दे दित्ती सी ते मानो गाउंदा गाउंदा एही कुछ कह रहा सी भावे कोई मोमन वेख रहा है भावे कोई पहाड़ी राजा है कोई हिंदू है कोई सिख है पानी मुंह विच देंदा होया एको ही पुकार है केड़ी

कहूं जच गंधर्व उरग कहूं विद्याधर कहूं भय किन्नर पिशाच कहूं प्रेत हो कहूं हो के हिंदू आ गायत्री को गुपत जप्यो कहूं हो के तुरका पुकारे बांग देत हो कहूं को कुकाब होए के पुराण को पढ़त मत कतहूं को

गुरु की संगत अज दा शुभ दिन कॉन्फ्रेंस दे पहले दिन दी अरमता और बख्शिश सतगुरु जी दी। इस वक्त समा जरा अमृत वेले तो लंघ के आप जी नूं जरा थोड़ी जी गर्मी महसूस हो रही होवेगी। जिथे आप जी ने सतगुरु जी दे कई चमत्कार देखे हैं उथे सब तो वड्डा चमत्कार शब्द है, एदे विच कला है। वाजे पंज शब्द घर सभा गए, घर सभा गए शब्द वाजे कला जद गिरधारिया। उस कला नूं होर प्रगट करन वास्ते सतगुरु जी ने शब्द नूं रागां विच उचारण कीता है। मेरा दिल करदा है इस वक्त सारे दुनिया

मन विच वस जावे बड़िया बरकता। वाहेगुरु दा नाम प्रभु दा नाम हिरदे च वस जावे बड़िया वड़ियाई, बड़ा आनंद है। ये रोने झोरे केवल उन्हां लोकां वास्ते ने जिन्हां दे हिरदे च नाम नहीं, जिन्हां दे हिरदे विच नाम है पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद है। जपदे हां, जपण दे जतना विच हां, हिरदे च वसाउण दे जतना विच हां। साडी लोड भी है, साडा जतन भी है। लोड़ भी साडी है कि सानू सुख मिले, ते सुख क्योंकि होर कितने नहीं मिलदा। साडे सारिया दा प्रयोजन है कि नाम वस जावे हिरदे च, जीवन च नाम आ जावे ताकि सुख आ जावे। ते जदों कदे ऐसा महसूस होवे ना कि मन अजे सुखी नहीं, मन अजे शांत नहीं, जदों कदे ऐसा प्रतीत होवे मन विचों क्रोध अजे नहीं गया, मन अजे लोभ करता है, मन च वासनावां कायम ने, मन विच ईरखा बदस्तूर मौजूद है, जिन्ना चिर महसूस होवे समझ लेना नाम अजे जपण दे आर विच आ हिरदे च नहीं वसिया। जदों हिरदे च वस जांदा है मनुख बड़ा होर तरह का हो जाता, उदो रोमा विचों अमृत चढ़दा है, स्वाद आउंदा है। उस वेले खून दे कतरिया दे विचों भी कली कली नस विचों पूरे शरीर विचों स्वासा विचों नाम उचरिया भी जांदा है ते नाम सुनदा भी, अपने आप नूं अपने आपे विचों ते अपने आले दुआले विचों नाम दीआं धुनां प्रतीत हुंदीआं ने। इस शब्द आपां पढ़ रहे हां ना, साहिबंत कहिंदे ने नाम जीत आवे सद कीर्तन करता। कमाल की गल है, कीर्तन कितने घंटा डेढ़ घंटा तो हो गया, सदा ही कीर्तन होता रहे, यह किवें हो सकता। वो एक अवस्था है, कोई उसनू अनहद नाद की गल करता, कोई उसनू इलाही नाद की गल कह के करता, कोई किसी ढंग नाल दसता है। लेकिन यह बिल्कुल सत है कि जिसले वाहेगुरु हिरदे च वस जावे ना, जो लोर ते मस्ती पैदा होती है, जो आनंद की अवस्था पैदा होती है, हर वेले ही जीवन च एक संगीत गूंजता है। हर वक्त भी आला दुआला ते मनुख दा अपना शरीर यूं ही जापदा जिवें झूम झूम के गा रहा हो। ते ना ना होवे ते जिहड़ा मर्यादा अनुसार कीर्तन असीं करने आ, कई वारी इह बोझ जापदा, सुनना भी बोझ जापदा, करना भी बोझ जापदा। हिरदे च ना वसे आनंद ना देंदा ते वगार जापदा, बोझ जापदा। ते शुरू शुरू विच सारा कुछ बोझ ही जापदा। मैं एक बेनती करा, बच्चे नूं स्कूल तोरने आ पहला आड़ी भी करता, कोई विरले बच्चे होंगे ने जिहड़े शौक नाल तुरदे ने, दूसरे बच्चों वल वेख के इन्हां दा लिबास बड़ा वधिया है, उत्थे खेडदे ने, हसदे ने, नचदे ने, कईआं बच्चों के अंदर यह शौक पैदा करता जाता है। बनेगा बहुत वड्डा अफसर, बनेगा बड़ियां तरक्कियां करेगा, वह चा लैके तुरदा। नहीं तो आम तौर पर बच्चा जिहड़ा स्कूल जाण लगिया बहुते तां रोंदे भी वेखेगा, उहनूं एक बार धक्के नाल स्कूल पहुंचाउणा पैंदा, उत्थे जाके बहिंदा, एक तां जकड़ के बहना बड़ा होता, एक जो कुछ पढ़ाते ने उसकी समझ तो बाहर आता है, वह पहला पहला बड़े परेशान होता है। पहला पहला उसनू कूड़ा एड़ा या एबीसी या जो भी अखर है बोझ जापते, लेकिन चार दिन बाद वह जो बोझ है वह ज्ञान का बोध का एक सोमा बन जाता है, फिर उही अखर मौज बन जाते। उन्होंने अखर बिना नींद नहीं आती, जब तक कुछ पढ़ना लवे ओदी मन की शांति नहीं बनती। यह संसारी पद्धर की गल, धर्म के मार्ग से भी ऐसा है। शुरू शुरू च अमृत भी बोझ जापता है, नितनेम भी बोझ जापदा है, बाणी पढ़नी गाउनी सुननी भी कई बार बोझ जापती है। और बहुत बंदे ऐसे वेखे ने जेड़े कदे कदाई इस पासे तुरन वाले ने, ना कीर्तन सुनना पै जाए, थोड़ा जिहा अगे पिछे हो जाए, लेट हो जाओ, वासियां मारदे ने, पासे मारदे ने, किहड़े वेले भुख पवे जान छुट्टे, फसे जापदे। लेकिन माड़ा जिहा बंदा रुचि लावे ते जिस तरह उह बेनती कीती है भी स्कूल च जाण वाले बच्चे कई ऐसे भी होंदे ने, उह वरिया बंदी पंद्रह पंद्रह वीह वीह वरे बोझ ही धोंदे ने, पढ़दे भी किताबां नाल मत्था मारदे ने, रोंदे हो, दुखी होंदे हो, कई वारी वह फेल हो जाते ते तू तू के अपने आप नूं शर्मो बशर्मी दूसरे नाल तोरदे ने, चा पैदा नहीं होंदा, शौक नाल नहीं पढ़दे। ते फिर उनके माता पिता उनका आला दुआला कहिंदे पढ़दा तां हैगा, पढ़दा कदा है, बगार कटदा है, तू घसीट के तुरिया आउंदा। वैसे पढ़न वाली गल कोई बिल्कुल इसे तरह साडी गल,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੇਵਲ ਕਰਦੇ, ਕਰਨ ਦਾ ਠਰਕ ਹੈ, ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਪਾਂਗੇ, ਪੜਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸਟੱਡੀ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਸੇਕ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਭਗਤੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਜਨ ਭਜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੀੜ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਲਟਕਾ ਦਈਏ, ਹਵਾ ਚ ਲਟਕਾ ਦਈਏ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਲਣਾ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਚ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਦਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਭਾ ਤੇ, ਜੀਭਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੜ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਲਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਲ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਲਜਾਂਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਫਲਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਇਹਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਆਖਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਚ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ ਗੁਰਪੂਰੇ ਦੀਓ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਚ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ, ਚੀਤ

जैसे अल कमला बिन रह ना सके तैसे मोह हर बिन रहन न जाए तैसे मोह हर बिन रहन ना जाए राख शरण जगदी सर प्यार।

हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपते, हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपते, जो त्रिखा वंश बिन नीर मेरे मन

प्रेम लगो हर तीर हमरी बेदन हर प्रभु जाने हर प्रभु जाने हमरी बेदन हर प्रभु जाने मेरे मन अंतर।

लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सगल स्यो मौला, अलिप्त रहो जैसे जल में कौला। मुख की बात सगल स्यो करता, जी संग प्रभु अपना धरता। दीस आवत में बहुत बियाला, सगल चरण की एहो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। पूरा

जिथे भी कोई रब तू भुलिया इंसान। गुरु नानक बाबा नू नजर आया, सतगुरु उथे आप पुजे। संसार दी रीति है भई महापुरश वली पीर पैगंबर उन्हां कोल दुनिया जांदी है, पर गुरु नानक सच्चा पातशाह आप लोगां कोल जांदे रहे। बाबा काशी गए, बनारस गए, हरिद्वार गए, गया जी गए। क्यों गए? भई लोगां दा तीर्थां ते इकट्ठ हुंदा सी ते बाबा जी उथे अपने विचार सुनांदे सन, लोगां नूं सीधे मार्ग ते लांदे सन। बटाले दे लागे बिल्कुल नजदीक, क्योंकि बटाले विच गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे सौरा परिवार सी, ते लागे अचल बटाला है। ओ सिद्धां दा बहुत वड्डा गढ़, शिवरात्रि दा मेला लगा होया सी, ते गुरु नानक ने सुनहरी मौका तकिया, कहण लगे मर्दाने आ चल। गरीब नवाज पातशाह सत बचन, भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते ने,

लगी बरसन लक्ष्मी। बाबे दा आउणा सुन के सारे लोग उधर नू आ गए जिधर गरीब नवाज पातशाह बैठे सन। लगी बरसन

भगतिया गई भगत भोले। जिस वेले भगतिया ने तकिया भी जिदे विच लोग माया पा रहे ने ओ लोटा किधर चला गया, ते भाई साहब कहंदे ने ओ भगतिया नू ओ भगत पौनी भुल गई, ना उताल रहा ना उराग रहा।

खादी खुण सुजुगी सिरा। जिस वेले बंदे नू अपनी हार हुंदी दिस पवे ना, ए आम बात है, फिर वह झगड़े ते उतर आंदा है, और तां पेश जांदी कोई नहीं। जोगियां ने गुरु नानक बाबा नाल बहस करनी शुरू कर दिती। भाई साहब भाई गुरदास जी

0: ए सुन बचन जुगीसरा।
1: भाई साहब कहते हूं झगड़ा कर लगे ने, गुरु नानक नु डराउन लगे ने, अपनी शक्तियां दा प्रभाव।

बाबा जी जिस वेले मुल्तान गए ना ते ओथे दे पीरा नू पता लगा के वड्डा पीर आया एदे अगे साडी दाल नहीं गलनी ते उन्हां ने अपने एक सेवक नू अपने चेले नू एक दुध दा छन्ना भर के भेजिया जिदा मतलब सी भी पीरीपुर मुल्तान एथे तेरी लोड़ ही नहीं एथे अगे पीरा नाल भरिया पिया तेरी की लोड़।

फरियाद करते हैं, जिन्हानू कीती हुई बंदगी उते विश्वास है, वो बंदगी करके ये नहीं आखते बंदगी कीती ते मिले या कुछ नहीं। लबों पे मुहरे खामोशी दिलों में याद करते हैं, चुपदा ताला उना दे बुलां उते लगा है, पर अपने मन में अपने प्यारे दा स्वास स्वास सिमरन करते ने, बंदगी करते ने। बंदगी कौन करता है? किनू उस उते विश्वास है, नहीं तो किसी नू की लोड़ है? जे विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। बंदगी करता रहा, बंदगी कीती है, मिलिया कुछ नहीं। आज मस्जिद विच नहीं जाना, आज मैं नमाज नहीं पढ़नी, आज मैं इबादत नहीं करनी। क्यों? इबादत क्यों नहीं करनी? कई वरे इबादत कीती है, बंदगी कीती है, जे इना चिर बंदगी करके भी कुछ नहीं मिलिया तो फिर बंदगी किन्ना चिर कीती जानी है? अपने घर विच आकड़ के बैठा है, घर विच बैठिया बैठिया वो समा आ गया, बाहर दी दलीजा वल ध्यान पिया, दलीजा विच बड़े सत्कार नाल अपना मूह कुत्ता उस दी दलीजा विच रख के बैठा है। वाह बई वाह, छम छम रोण लगा, मन नूं बड़ी वड्डी सारी लानत पाई, कहण लगा ए कुत्ता है, तू इस नूं अपने घर विच रखिया है, ए तां खसम वाला खवाउंदा है, तू इसका साई खवाउंदा है, पर जे तू अपने खसम की बंदगी विच रात जागिया ते अपने आप नूं एडा वड्डा पीर सदाउणा है, आकड़ के अपने घर विच बह गया, मैं बंदगी नहीं करनी, जागिया ते उसकी वफादारी विच है अपने मालक दी, च तेरे नालों ए चंगा है, तू ते रात किसे वेले सौ जांदा होवेगा, पर ए कुत्ता तेरी वफादारी विच सारी रात जागदा होवेगा। मन उत्ते बड़ी वड्डी ठोकर वजी, राती जागे ते पीर सदा, रात जाग के अपने आप नू पीर सदवाउंदा है, राती जागे ता पीर सदावे, पर राती जागण कुत्ते मालक दा दर कदे नहीं छड़दे, भावे सौ सौ खावण जुते, करदा रखिया होया कुत्ता दुरकार के बाहर कढ दिंदे हां, पर थोड़े समय तो बाद उन्हूं फिर अपनी दलीजा विच वेखते हैं, क्योंकि उस कुत्ते दा अपने मालक नाल अथाह प्यार है, उसका नमक हराम नहीं करता, जिसका खांदा है उसका हराम नहीं करता। पर इंसान जो है, जे जुगचारे आरजा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए, चंगा नाम रखाए के मेरा ना चंगा बन जावे, सारा नालों उच्चा मैं बन जावा, चंगा नाव रखाए के जस कीरत जग ले, सारी दुनिया का जस मैं खट लवा। पर गुरबाणी फैसला करती है, जे तिस नजर ना आवई ता वात न पुछे के, जिन्ना चिर तू उसकी नजर थले नहीं है, उसकी छतर छाया अपने उपर नहीं मनता, उन्ना चिर कुछ नहीं है। तीर्थ वरत अरदान कर मन में धरे गुमान, नानक ने फल जातते ज्यो कुंचर इसनान। जिवें एक हाथी पवित्र जल नाल इशनान करके मन की पूर्ति उन्ना चिर नहीं जिन्ना चिर मिट्टी कट्टे दी सुंडा भर के अपने उत्ते नहीं सुट लैंदा, पौंक पौंक के रात गुजारन तेरे रूड़ियां सुते, चलो बुलिया यार मनाला नहीं ते बाजी लेते, अजे जित गए तू हार जावेगा, दौड़िया आओ इन्हां तुकां नाल जुड़िए।

मैं बंदा बेखरीद सच्चा है मेरा, मैं बंदा बेखरीद सच्चा है मेरा, जो पिंड सतसा सब कुछ है तेरा, माने ने माने तू तने तेरा परवासा, बिन साचे अंतिक है तो जानू काचा।

तो तुम पे लेना, तुम मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सेना। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा

तेरा खेल अखाड़ा जियो, तुर बिंदु जा और ना कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। क्या कहिए किस आस सुनाइए, जो कहना तो सब जी पास, सब किता तेरा वरते, सदा सदा तेरी आस, जिदे वड्याई ता तेरी वड्याई।

बाहिर तेरा प्रवक्ता, तू जन के है संग, कर कृपा प्रीतम प्रभु अपने, नाम जपो हरन जन को प्रभु अपने का तान, जन को प्रभु अपने का तान, जो तू करे

अपनी कृपा करे। चल कमल नल खड़ा दे इस दिन आम की पत्र मिश्र गत नारायण तन पाल साखी।

है दूजी नहीं थार, जिस पे हम जाएंगे तो तुम ते लेना तू मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सहना, जो तू दे सोई सुख सहना, हर आपे हुए कृपाल आप ये लाएंगे।

हलते पलते प्रभाव से हुए कार्य हुए तले पूरे हर नाम जप सुख सहजे हर नाम जप सुख सहजे मज्जन होत साधु तुरे आवण जान रहे थित पाई जन मरन के मिटे वसूरे गुर नारायण दाई गुरु गुर सच्चा सिद्धनहार गुर तुठे सब कुछ पाया जन मानस सब बनिहार हर गुण गाओ साफ सफाई हर गुण गाओ साफ सफाई मन तिंदे